अरे तो बना बाते रंग लेन संदेग ना तुम कोटु शेतां तां तीसु को कोटु शेतां ला सोका अंगी कोनी चामचोर गर दीज की शेषन बात देवजीन तीन शून्य की चित्तूल तामजे ला तेरंग चाम्बा सोसोग नंगर गी सशी जोइल